क्या बात? चम के अगल बात या मुन अगल बात अमुने ले मी इम्या नो ट्रांसमार उने बांगा गए नो चमु पाई इसे वो एरे कापिसा क्या नंबर आता नंबर सोमो